0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मनभावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कभी आपने आसमान में तैरते हुए बादलों के बड़े बड़े महलों को देखा है? धूप की रोशनी में वे कभी किसी किले जैसे दिखते हैं तो कभी किसी विशाल पर्वत जैसे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे कितने मजबूत और स्थायी हैं, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आता है और वे देखते ही देखते हवा में विलीन हो जाते हैं। उनका कोई नामो निशान नहीं बचता। हमारा यह जीवन, हमारा यह संसार और हमारा यह सारा ऐश्वर्य भी उस बादल या धुएं के महल जैसा ही है, जो दिखता तो बहुत भव्य है पर उसके भीतर कोई ठोस आधार नहीं है। कबीर साहब आज हमें इसी ऊपरी दिखावे के पार झांकने का इशारा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब के इस परम सत्य की वाणी को। कबीर, हरि की भक्ति बिन धीर जीवन संसार, धुआ केरा धौल हर जात न लागे बार।

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच, और मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं मिस्टर राजेंद्र बाजी, और इस प्रोग्राम का नाम है करियर गाइडेंस। आज का टॉपिक है हमारा मस्ट हैव इन कैंडिडेट बिफोर फेसिंग द जॉब इंटरव्यू। हम इस बात को आज टच करेंगे, इंटरव्यू देने के पहले उसे क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू में बैठने के पहले,
1: या इसको हम लोग पूर्व तैयारी भी बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने, सही शब्द बताया, पूर्व तैयारी जिसे कहते हैं, प्री इंटरव्यू। इसमें 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, और एक गुजारिश है दोस्तों से जो सुन रहे हैं आज, उन लोगों से अगर आपके पास अगर पेन और कागज हो तो आप उसे लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो है किताबी आपको नहीं बताएंगे, इनफैक्ट है ना, हमारा जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हम उसको शेयर करेंगे। पहला पॉइंट है फर्स्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन पे मैं थोड़ा सा एलेबरेट करना चाहूंगा कि कैंडिडेट का फर्स्ट इम्प्रेशन एक्चुअली है क्या। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बाजी सर।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: मैं जब ऑफिस में जो बैठता था, एक स्थान था, एक क्यूबिकल या कैबिन जिसे भी कहिए, मैं वहां पे बैठता था। तो जब भी कोई कैंडिडेट ऑफिस में आता था तो रिसेप्शन में आके थोड़ा सा उसे 5-10 मिनट वेट करना पड़ता था। तो वो रिसेप्शन में वेट करता है और मेरे टेबल तक आते तक तकरीबन जो कदम थे, चलने का कदम जो होगा 20 से 25 कदम तकरीबन डिस्टेंस होगा मेरे टेबल तक आते तक। अब जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है, मैं जो रहता था, बगैर एक शब्द भी खोले फर्स्ट इम्प्रेशन उस कैंडिडेट का मेरे मन में क्रिएट हो जाता था। अब दोस्तों जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट कैसे होता है, और वो एक पॉजिटिव वाइब देता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। अगर इंटरव्यूअर ले रहा है उस पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट हो गया है, तो आप तकरीबन 15-20% जो आपका काम है इंटरव्यू देने का, एक पॉजिटिव आपका पास कर जाते हो। तो उसमें 3-4 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा जो सुन रहे हैं। आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, इंटरव्यू पे आप टाइम पे पहुंचिए, और आपके चेहरे पे एकदम वार्म स्माइल होनी चाहिए। तो छोटा छोटा मैं बता देता हूं, प्रेजेंटेबल का मतलब सही तरीके से आप ड्रेसअप होना चाहिए। ड्रेसअप का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे और ब्रांडेड आप कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे और आयन किए हुए है।
1: राइट।
0: एंथुसियाज्म मतलब जब आप इंटरव्यू जहां पे आप वेट कर रहे हैं, इंटरव्यूअर के डेस्क तक पहुंचे, तो आप में थोड़ा सा जोश होना चाहिए, चल के आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप जोश दिखाइए जिसमें आप में लगे कि एनर्जी है। और तीसरा, ये तो थंब रूल है, दुनिया का थंब रूल है, अगर आपका 10 बजे इंटरव्यू है तो 10:45 बजे आप हाजिर हो जाइए उस ऑफिस में जहां पे भी आपका इंटरव्यू है। और तीसरा, इट गोज विदाउट सेइंग, एक सिंपल सी स्माइल, एक वार्म स्माइल रखिए, ये आपके बारे में, खुद के बारे में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वाइब्स वो देते हैं इंटरव्यूअर को कि पॉजिटिव। अंदर से नर्वस होगा, अग्रीड, 100 में से 100 नर्वस होंगे, पर आपको एक थोड़ी सी स्माइल आप चेहरे पे रखिए। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन, इंटरव्यू देने के पहले ये फर्स्ट इम्प्रेशन।
1: बहुत बढ़िया सर, तो ये पहला पॉइंट आपने बताया
0: जी,
1: है ना। तो इंटरव्यू के लिए जो हमारे पास होनी चाहिए वो दूसरी चीज ये है कि कॉन्फिडेंस।
0: जी जी,
1: है ना। तो कॉन्फिडेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ
0: जी,
1: है ना। तो कॉन्फिडेंस मतलब क्या, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है। और ये आत्मविश्वास जो है किसी कॉलेज में या फिर कहीं पे इसका ट्रेनिंग नहीं होता है।
0: सही कहा,
1: ये चीज अपने को खुद ही डेवलप करनी होती है।
0: जी जी,
1: है ना। तो कॉन्फिडेंस ये क्या है, बेसिकली ये पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका।
0: जी जी जी,
1: है ना। एक वर्ड में मैं बता दूं आपको कि जैसे इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
0: राइट,
1: आई कैन स्टिल डू, आई कैन स्टिल कम अप विद माय ओन स्ट्रेंथ, तो उसको पॉजिटिव कॉन्फिडेंस हम लोग बोलते हैं। तो किसी भी हालत में, इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो लोग आपको पूछते हैं बहुत सारे सवाल ऐसे जो आपको पता नहीं होते हैं।
0: जी जी,
1: तो कॉन्फिडेंटली यू शुड से आई डोंट नो दिस सर बट आई कैन लर्न दिस, तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस उभर के आना चाहिए।
0: जी जी, सही कहा आपने, सही कहा।
1: और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस जो है वो आपके बातों में ही नहीं बल्कि आपके नजरों में, आपके बैठने के स्टाइल में, है ना, आपके ओवरऑल ड्रेसिंग में, सारे चीजों में रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे लिसनर्स को कि कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा सोचे
0: जी,
1: थोड़ा सा वर्क करे खुद के ऊपर
0: जी।
1: इसको हम लोग सेल्फ नर्चरिंग भी बोलते हैं।
0: हाँ हाँ, है सही कहा,
1: सेल्फ नर्चरिंग करना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: है ना। ये चीज ऐसी है कि इट इज अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस, योर एजुकेशनल नॉलेज, दिस इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी लेवल ऑफ इंटरव्यू।
0: राइट राइट राइट, मतलब जिसे थोड़े में मैं बोलूं, कहना चाहूं,
1: हाँ जी,
0: तो ये आपके ही हाथ में है,
1: आपके हाथ में चीज है, और इसकी तैयारी आप करके जाए
0: जी, है ना,
1: क्या बोलना है आपको, वो यदि आप थोड़ा सा रिवाइज कर ले और कॉन्फिडेंटली वहां पे प्रेजेंट करे तो उसका बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाता है। तो कॉन्फिडेंस आपका होना बहुत जरूरी है।
0: जी जी,
1: सिंपल से लैंग्वेज में मैं ये बताऊंगा कि आपको जितना पता है कॉन्फिडेंटली बोलो, ये मुझे पता है।
0: जी,
1: जो पता नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आप गधे हो या फिर आप ये सीख नहीं सकते हो।
0: सही,
1: बी कॉन्फिडेंट, ये नहीं है पता मुझे, मैं सीख लूंगा।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।
1: दैट इज हाउ यू नीड टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ।
0: एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली राइट।
1: बहुत कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है,
0: इम्पोर्टेंट। बहुत सही चीज बताई बाजी सर आपने, और मैं अभी तीसरे पॉइंट पे चलता हूँ सीधे। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वैसे सभी हैं पर उनमें से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। बाजी सर मैं आपको एग्जांपल देना मैं चाहूंगा।
1: हाँ जी,
0: आपने भी बहुत इंटरव्यू लिए, फ्रेशर्स कैंपस में जाके लिए, एक्सपीरियंस सब कुछ लिया।
1: राइट राइट,
0: आपके करियर में भी ऐसे कितने कैंडिडेट आए होंगे आपको लगता होगा जीनियस है, नॉलेज बहुत अच्छा है, पर सिर्फ आपने इसलिए रिजेक्ट किया, और मैंने भी रिजेक्ट किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं रिजेक्ट किया हूँ, कि सिर्फ उस कैंडिडेट में कम्युनिकेशन की स्किल नहीं थी।
1: राइट,
0: और मुझे इस बात का बहुत दुख भी होता था कि सब कुछ है उस कैंडिडेट में पर वो कम्युनिकेशन जो है वो कर नहीं पाते हैं। और मैं एक और एक्सपीरियंस में बताता हूँ, बी स्कूल में एज ए विजिटिंग फैकल्टी गेस्ट लेक्चरर करके भी मैं जाता रहता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से जो सुन रहे हैं अभी कान खोल के सुन ले और इसे गार्ड बांध ले, नॉलेज इज रिक्वायर्ड ओनली 50%। व्हेनेवर कोई भी आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है 50-60% नॉलेज है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी बचा उसे कम्युनिकेशन ही चाहिए रहता है।
1: बहुत सही बता रहे हैं सर आप।
0: जो 50% आपका नॉलेज है और 50% उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैंने अपने करियर में उस कैंडिडेट को हमेशा टिक मार्क किया और रिक्रूट किया। तो कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों, जो सुन रहे हैं अगर कल से आप कम्युनिकेशन पे अपने वर्क करना चालू कीजिए, और इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश ही बोलें, पर आपको कम्युनिकेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: करेक्ट करेक्ट,
0: एज आई से हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द एरा, नोबडी कैन टच हिम, बट नॉट नेसेसरली ही कैन डाउनलोड हिज नॉलेज एज ब्यूटिफुली हु हैज ओनली 50% द नॉलेज वॉट ही हैड। तो दोस्तों कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, और बाजी सर आप अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा शेयर कीजिए।
1: राइट राइट सर, कम्युनिकेशन को हम थोड़ा सा है ना ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं।
0: जी,
1: अपने विचार आप कितने अच्छे तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकते हो, दैट इज कम्युनिकेशन।
0: जी जी जी,
1: मैं मेरे विचार यदि स्पष्ट तरीके से कॉन्फिडेंटली आपके सामने मैं रख रहा हूँ और वो आप तक पहुंच रहे तो मेरा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ।
0: एग्जैक्टली,
1: यदि वो पहुंच नहीं रहे
0: जी
1: तो फिर आपका कम्युनिकेशन
0: नहीं हुआ,
1: नहीं हो रहा है।
0: सही कहा आपने, सही कहा।
1: और ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है।
0: सही कहा,
1: और इसी मिस कम्युनिकेशन से ही बहुत बड़े आज में जो भी प्रॉब्लम हो रहे वो इसी की वजह से
0: जी,
1: हो रहे।
0: जी, जी, जी।
1: इंटरव्यू में हम लोग यदि सक्सेसफुल होते हैं या फेल होते हैं तो उसका मेन रीजन यही होता है कि डू वी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली और नॉट। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर करने के लिए मैं सबसे पहला रूल ये बताऊंगा कि सामने वाले की चीज है ना ध्यान से सुनो।
0: तो आपका कहने का मतलब वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसे ध्यान से सुनो,
1: सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान से सुनो सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है।
0: राइट,
1: उसका मकसद क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है।
0: राइट राइट,
1: है ना, ये फर्स्ट चीज है।
0: जी जी,
1: वो आपको समझ में आ गई देन कामली पोलाइटली शांति से उसका आंसर आप दो।
0: सही कहा,
1: तो लिसनिंग स्किल, उसके बाद में आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल। आप सामने वाला बोल रहा है उसके सुनने के पहले ही कुछ जवाब दे दो
0: जी,
1: तो सामने वाला भी थोड़ा सा ये हो जाता है यार ये क्या बोल रहा है।
0: जी जी जी, सही कहा आपने।
1: तो फर्स्ट है लिसनिंग स्किल, आप सुनो सामने वाला जो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो और फिर उसको आंसर दो विथ योर क्लियर थॉट।
0: यस यस यस यस,
1: है ना।
0: यस,
1: अब आंसर में आपकी क्लैरिटी इन थॉट्स कैसी होती है कि जो आपको बोलना है ना वो क्लियरली बताओ, सर ये चीज ऐसी है और मुझे ये पता है।
0: एग्जैक्टली,
1: क्लैरिटी इन थॉट।
0: सही कहा
1: आपने, क्लियरली एक चीज यदि प्रॉपर इसमें कम्युनिकेट की है विद क्लियर थॉट तो वो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है।
0: सही कहा आपने,
1: आप खुद कंफ्यूज है तो वो चीज सामने वाले तक पहुंच नहीं पाएगी।
0: true, true.
1: तो क्लैरिटी इन थॉट एंड क्लैरिटी इन आंसर, ये बहुत जरूरी है
0: जी,
1: है ना। और यदि आपको पता नहीं है तो आप फ्रेंकली बोल दो, मुझे ये पता नहीं है सर।
0: जी, बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा,
1: है ना। तो पता नहीं है ये कॉन्फिडेंटली, उसको कॉन्फिडेंस भी दिखता है और दूसरा ये आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो जाता है।
0: जी जी जी,
1: है ना। देन ही विल नॉट स्क्रू ऑन दैट पॉइंट।
0: यस
1: यार, नहीं इसका और बताओ और बताओ।
0: जी, जी, जी,
1: पता नहीं तो बता दो, मुझे ये पता नहीं है।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और हम इस कम्युनिकेशन को थोड़ा लंबा इसलिए खींच रहे हैं दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट मैंने आज तक रिजेक्ट किए, बिलीव मी बाजी सर ने भी इसलिए रिजेक्ट किए कि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है कैंडिडेट, इसलिए रिजेक्ट होता है। मैक्सिमम रिजेक्शन दोस्तों, आप सुन लीजिए, लिसनर जो सुन रहे हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन कैंडिडेट नहीं कर पा रहा इसलिए होती है। और दूसरा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और थोड़ा सा ऐड करूंगा, जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो खासकर जो फ्रेशर होते हैं या एक आध साल ही एक्सपीरियंस है, जब इंटरव्यू देने आते हैं थोड़ा नर्वस रहते हैं और बड़ी धीमी आवाज में बात करते हैं। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो अपनी आवाज को थोड़ा सा, वॉल्यूम को थोड़ा सा ऊपर उठाइए।
1: इससे तो दो चीजें मतलब का बेनिफिट हो जाता है।
0: जी,
1: यदि आप थोड़ा सा लाउड बोल रहे हो तो सामने वाला का अटेंशन आपकी तरफ रहता है।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
1: और यदि उसका अटेंशन आपकी तरफ है तो इसका मतलब दो कम्युनिकेशन पॉइंट ज्वाइन हो चुके हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: इधर से उधर वो मैसेज जाने में आसानी हो जाती है।
0: दोस्तों ऐसे ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स आपको आज बताए हैं कि तो दुनिया में आप कहीं भी खोजोगे तो आपको मिलेगा नहीं। कैसे हम दोनों ने मिलकर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया, वो आपके साथ आज पूरा राज खोल रहे हैं हम।
1: राइट राइट राइट। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है।
0: जी जी, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: तो अगला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। इसमें एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो वो अभी बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी के ग्रुप हेड एचआर है। ग्रुप हेड है ना, बहुत बड़ी हस्ती, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। अभी वो यूएस में बेस्ड है, कंपनी यूएस कंपनी है। तो एक बार मैंने उनसे ऐसी पूछा कि इंटरव्यू कैसे चालू था। उसने कहा, अबे यार इंटरव्यू तो जिस मोमेंट कैंडिडेट मेरे दरवाजे के अंदर पांव डालता है उस मोमेंट से मैं असेसमेंट करना चालू कर देता हूँ उस कैंडिडेट का। तो मैंने पूछा कैसे, तो उसने मुझे 10 मिनट केवल बॉडी लैंग्वेज पे बात बताई। तो बोला कैंडिडेट जब बैठता है रिसेप्शन में कैसे बैठा है, कैसे रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा है, कैसे अगर सीटिंग नहीं है तो कैसे वेट कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे, उससे पूरा उसका समझ में आ जाता है कि वो कैंडिडेट किस तरह का कैंडिडेट है। तो उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: मैं जब आप रिसेप्शन में आके बैठेंगे, छोटा छोटा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, कभी भी लेजी तरीके से आप जो रिसेप्शन एरिया वेटिंग एरिया में कभी भी मत बैठिए, अटेंटिव और एंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ आप बैठिए। लेजी तरीके से जैसे लटक गए, झुक गए, आराम से ऐसे बैठ गए, वैसे बिल्कुल आप मत कीजिए। और जैसे मैंने कहा, मैं कैसे एसेस करता था, रिसेप्शन एरिया से लेके मेरे डेस्क तक 25 कदम वो कैंडिडेट कैसे आ रहा है। और बिलीव मी, वो जो 25 सेकंड होते थे, उस 25 सेकंड में बाजी सर मैं कैंडिडेट को 20-25% मैं आइधर टिक कर देता था या क्रॉस कर देता, या इधर मैं सोचता था यस इसमें दम है या इसमें दम नहीं है, समझ जाता था। क्यों? अगर उसकी वॉक में एनर्जी है तो मुझे लगता था यस एंथुसियाज्म है बंदे में, कैंडिडेट में जोश है, यानी वॉकिंग जो है तो एनर्जी दिखाइए। और आप जब बैठेंगे तो एकदम अटेंशन भी मत बैठिए और लेजी भी मत सीटेंगे, तो आपका पोस्चर जो है स्ट्रेट होना चाहिए और एनर्जी भरा होना चाहिए।
1: राइट राइट।
0: तीसरा, जब इंटरव्यूअर से आप बात कर रहे हैं तो इधर उधर लेफ्ट राइट देख के, नीचे ऊपर देख के बात मत कीजिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है जिससे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपको घूरना है, नॉर्मल जो है आई कॉन्टैक्ट, दैट शोज कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत है। जब आप आंख में देख के बात करते हैं तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस है। अगर आप इधर उधर करेंगे तो हिंदी में कहते हैं जिसे आंख चुराना, नर्वस हूँ मुझे आता नहीं है तो मैं आंख चुराऊंगा, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं आंख में आंख डाल के मैं बात करूंगा। और चौथा पॉइंट मैं डालना चाहूंगा, जब इंटरव्यूअर आपसे कुछ सवाल कुछ कर रहा है तो आप उसको थोड़ा जो हेड है मूवमेंट है वो थोड़ा होना चाहिए। जैसे हम यस कहते हैं तो आपका सर जो है
1: आपको समझ रहा है इसका मतलब।
0: हाँ, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वैसे बहुत सारे पॉइंट है, हम उतना सारा भी कवर नहीं कर सकते हैं, पर ये मेन जो चार पॉइंट है ये मैं बहुत एम्फेसिस करना चाहता था। मुझे अगर कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज अगर पसंद आ जाए तो उस कैंडिडेट को मैं हमेशा रखता ही था कि अगर इसको ले सकते हैं बॉस, इसमें दम है।
1: तो हमने ये चार पॉइंट कवर किए हैं।
0: जी
1: है
0: जी।
1: फर्स्ट इम्प्रेशन कॉन्फिडेंस, देन थर्ड इज कम्युनिकेशन, फोर्थ इज बॉडी लैंग्वेज। तो लास्ट में मैं फिफ्थ पॉइंट ये हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है नॉलेज।
0: जी जी।
1: ये फिफ्थ में हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि ये पहली चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी जी,
1: है ना, नॉलेज आपके पास है
0: जी,
1: है ना, जैसे आपने भी शुरू में बताया कि 50% नॉलेज भी है तो भी चल सकता है
0: जी,
1: बट उसमें पहली चार चीजें होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही,
1: यू शुड गिव प्रॉपर फर्स्ट इम्प्रेशन, यू शुड हैव अ प्रॉपर कॉन्फिडेंस,
0: यस,
1: यू शुड कम्युनिकेट
0: प्रॉपरली,
1: और उसका बॉडी लैंग्वेज से ये सारा रिफ्लेक्ट होता है।
0: जी जी,
1: तो नॉलेज के प्रिपरेशन कैसी करें, नॉलेज ये पॉइंट हमने कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो किसी पोजीशन के लिए हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें पता होता है कौन से कंपनी के लिए जा रहे हैं
0: जी,
1: तो अपने पास थोड़ा सा वक्त होता है उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए
0: जी,
1: हमने वो इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए
0: जी,
1: है ना, फिर वो इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज अपने पास रखनी चाहिए
0: जी,
1: है ना, कंपनी इंडस्ट्री, और फिर वो कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है ये भी थोड़ा सा जानकारी हमने कलेक्ट करके इंटरव्यू को जाने के पहले ही हम लोग रखे अपने पास तो अच्छा है, इट शोज योर प्रोफेशनल अप्रोच।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली,
1: कभी कभार इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है क्या आपको कंपनी के बारे में पता है,
0: जी पूछता ही है ना, पूछता ही है,
1: क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो आपका कॉन्शियस लेवल उसमें से रिफ्लेक्ट होता है।
0: करेक्ट करेक्ट करेक्ट,
1: आप कितने प्रोएक्टिव है वो उसमें से दिखता है।
0: ये आपने सही शब्द कहा, आप कितने प्रोएक्टिव
1: प्रोएक्टिव
0: जी,
1: है ना, आप ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते हो, थोड़ा सा नॉलेज लेके जाते हो, तो आपकी एक क्वालिटी वहां पे आप डिस्प्ले कर सकते हो,
0: बिल्कुल,
1: प्रोएक्टिवनेस, आपका कॉन्शियसनेस। तो ये फिफ्थ चीज है नॉलेज, और ये पांच चीजें बहुत अच्छी तरीके से सर आपने भी समझाई है,
0: जी,
1: है ना,
0: जी,
1: ये पांच चीजों पे हम लोगों ने पूर्व तैयारी करके प्रिपरेशन करके जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए।
0: बाजी सर बिल्कुल सही, और दोस्तों जो हम लोगों को सुन रहे हैं आज, ये आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस हम आज शेयर किया है हम लोगों ने कि हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया। तो ये पांच पॉइंट जो है इतने महत्वपूर्ण है, और बिलीव मी अगर आप इस चीज पे अगर तैयारी कर लेंगे तो आप 100 में से कम 80 इंटरव्यू जो है, जो 80%
1: वो थ्रू हो जाएंगे,
0: आप थ्रू हो सकते हैं, 100%. ये 100% है। मैंने और बाजी सर ने हमेशा कैंडिडेट में यही चीज ही देखी है, नॉलेज 50-60% हम देखते थे कि है नहीं है, बंदे में दम है, इंप्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, नॉलेज है, ओ यस यू आर इन, यस बाकी उसको तैयार किया जा सकता है।
1: करेक्ट, तो मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी इसको एक्सप्लेन किया है कौन से पांच पॉइंट पे हम लोगों ने तैयारी करके इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए।
0: राइट। दोस्तों जो सुन रहे हैं हमको, आज के लिए इतना ही, अभय चौहान मोटिवेशनल स्पीकर लीडरशिप कोच की तरफ से,
1: और मैं राजेंद्र बाजी, धन्यवाद,
0: थैंक यू वेरी मच।

0: नमस्कार, मी आहे पुष्कर श्रोत्री आणि तुम्ही ऐकत आहात रेडिओ मनभावन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट।
1: नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनोज और आप सुन रहे हैं 90.8 FM रेडियो मनभावन पर कार्यक्रम सुनो भाई साधो। दोस्तों, कभी आपने आसमान में तैरते हुए बादलों के बड़े बड़े महलों को देखा है? धूप की रोशनी में वे कभी किसी किले जैसे दिखते हैं तो कभी किसी विशाल पर्वत जैसे। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे कितने मजबूत और स्थायी हैं, लेकिन हवा का एक तेज झोंका आता है और वे देखते ही देखते हवा में विलीन हो जाते हैं। उनका कोई नामो निशान नहीं बचता। हमारा यह जीवन, हमारा यह संसार और हमारा यह सारा ऐश्वर्य भी उस बादल या धुएं के महल जैसा ही है, जो दिखता तो बहुत भव्य है पर उसके भीतर कोई ठोस आधार नहीं है। कबीर साहब आज हमें इसी ऊपरी दिखावे के पार झांकने का इशारा कर रहे हैं। आइए सुनते हैं कबीर साहब के इस परम सत्य की वाणी को। कबीर, हरि की भगति बिन धीर जीवन संसार, धुआ केरा धौल हर जात न लागे बार।

0: हेलो फ्रेंड्स, मैं अभय चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर और लीडरशिप कोच, और मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं मिस्टर राजेंद्र बाजी, और इस प्रोग्राम का नाम है करियर गाइडेंस। आज का टॉपिक है हमारा मस्ट हैव इन कैंडिडेट बिफोर फेसिंग द जॉब इंटरव्यू। हम इस बात को आज टच करेंगे, इंटरव्यू देने के पहले उसे क्या क्या पॉइंट्स को ध्यान रखना चाहिए इंटरव्यू में बैठने के पहले,
1: या इसको हम लोग पूर्व तैयारी भी बोल सकते हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, सही कहा आपने, सही शब्द बताया, पूर्व तैयारी जिसे कहते हैं, प्री इंटरव्यू। इसमें 5 पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, और एक गुजारिश है दोस्तों से जो सुन रहे हैं आज, उन लोगों से अगर आपके पास अगर पेन और कागज हो तो आप उसे लिख लीजिए दोस्तों, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है। हम जो है किताबी आपको नहीं बताएंगे, इनफैक्ट है ना, हमारा जो नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, हम उसको शेयर करेंगे। पहला पॉइंट है फर्स्ट इम्प्रेशन। तो फर्स्ट इम्प्रेशन पे मैं थोड़ा सा एलाबरेट करना चाहूंगा कि कैंडिडेट का फर्स्ट इम्प्रेशन एक्चुअली है क्या। मेरा एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ बाजी सर।
1: हाँ जी, हाँ जी।
0: मैं जब ऑफिस में जो बैठता था, एक स्थान था, एक क्यूबिकल या कैबिन जिसे भी कहिए, मैं वहां पे बैठता था। तो जब भी कोई कैंडिडेट ऑफिस में आता था तो रिसेप्शन में आके थोड़ा सा उसे 5-10 मिनट वेट करना पड़ता था। तो वो रिसेप्शन में वेट करता है और मेरे टेबल तक आते तक तकरीबन जो कदम थे, चलने का कदम जो होगा 20 से 25 कदम तकरीबन डिस्टेंस होगा मेरे टेबल तक आते तक। अब जो फर्स्ट इम्प्रेशन जो है, मैं जो रहता था बगैर एक शब्द भी खोले, फर्स्ट इम्प्रेशन उस कैंडिडेट का मेरे मन में क्रिएट हो जाता था। अब दोस्तों जो सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताता हूं कि वो फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट कैसे होता है, और वो एक पॉजिटिव वाइब देता है जो आपका इंटरव्यू ले रहा है। अगर इंटरव्यूअर ले रहा है उस पर आपका फर्स्ट इम्प्रेशन क्रिएट हो गया है, तो आप तकरीबन 15-20% जो आपका काम है इंटरव्यू देने का, एक पॉजिटिव आपका पास कर जाते हो। तो उसमें 3-4 चीजें हैं जो मैं बताना चाहूंगा जो सुन रहे हैं। आप प्रेजेंटेबल होना चाहिए, एंथुसियाज्म होना चाहिए, इंटरव्यू पे आप टाइम पे पहुंचिए, और आपके चेहरे पे एकदम वार्म स्माइल होनी चाहिए। तो छोटा छोटा मैं बता देता हूं, प्रेजेंटेबल का मतलब सही तरीके से आप ड्रेसअप होना चाहिए। ड्रेसअप का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत महंगे और ब्रांडेड आप कपड़े पहनेंगे, साफ सुथरे और आयन किए हुए है।
1: राइट।
0: एंथुसियाज्म मतलब जब आप इंटरव्यू जहां पे आप वेट कर रहे हैं, इंटरव्यूअर के डेस्क तक पहुंचे, तो आप में थोड़ा सा जोश होना चाहिए, चल के आप आ रहे हैं तो थोड़ा सा आप जोश दिखाइए जिसमें आप में लगे कि एनर्जी है। और तीसरा, ये तो थंब रूल है, दुनिया का थंब रूल है, अगर आपका 10 बजे इंटरव्यू है तो 10:45 आप हाजिर हो जाइए उस ऑफिस में जहां पे भी आपका इंटरव्यू है। और तीसरा, इट गोज विदाउट सेइंग, एक सिंपल सी स्माइल, एक वार्म स्माइल रखिए, ये आपके बारे में, खुद के बारे में एक बहुत बड़ा पॉजिटिव वाइब्स वो देते हैं इंटरव्यूअर को कि पॉजिटिव। अंदर से नर्वस होगा, अग्रीड, 100 में से 100 नर्वस होंगे, पर आपको एक थोड़ी सी स्माइल आप चेहरे पे रखिए। तो इसे हम कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन, इंटरव्यू देने के पहले ये फर्स्ट इम्प्रेशन।
1: बहुत बढ़िया सर, तो ये पहला पॉइंट आपने बताया
0: जी,
1: है ना। तो इंटरव्यू के लिए जो हमारे पास होनी चाहिए वो दूसरी चीज ये है कि कॉन्फिडेंस।
0: जी जी,
1: है ना। तो कॉन्फिडेंस के बारे में मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे बताता हूँ
0: जी,
1: है ना। तो कॉन्फिडेंस मतलब क्या, आत्मविश्वास। ये आत्मविश्वास बहुत ही जरूरी है। और ये आत्मविश्वास जो है किसी कॉलेज में या फिर कहीं पे इसका ट्रेनिंग नहीं होता है।
0: सही कहा,
1: ये चीज अपने को खुद ही डेवलप करनी होती है।
0: जी जी,
1: है ना। तो कॉन्फिडेंस ये क्या है, बेसिकली ये पॉजिटिव एटीट्यूड है आपका।
0: जी जी जी,
1: है ना। एक वर्ड में मैं बता दूं आपको कि जैसे इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड,
0: राइट,
1: आई कैन स्टिल डू, आई कैन स्टिल कम अप विद माय ओन स्ट्रेंथ। तो उसको पॉजिटिव कॉन्फिडेंस हम लोग बोलते हैं। तो किसी भी हालत में, इंटरव्यू में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि वो लोग आपको पूछते हैं बहुत सारे सवाल ऐसे जो आपको पता नहीं होते हैं।
0: जी जी,
1: तो कॉन्फिडेंटली यू शुड से आई डोंट नो दिस सर, बट आई कैन लर्न दिस। तो वहां पे आपका कॉन्फिडेंस उभर के आना चाहिए।
0: जी जी, सही कहा आपने, सही कहा।
1: और ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, कॉन्फिडेंस जो है वो आपके बातों में ही नहीं बल्कि आपके नजरों में, आपके बैठने के स्टाइल में, है ना, आपके ओवरऑल ड्रेसिंग में, सारे चीजों में रिफ्लेक्ट होता है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा सारे लिसनर्स को कि कॉन्फिडेंस पे थोड़ा सा सोचे
0: जी,
1: थोड़ा सा वर्क करे खुद के ऊपर
0: जी।
1: इसको हम लोग सेल्फ नर्चरिंग भी बोलते हैं।
0: हाँ हाँ, सही कहा,
1: सेल्फ नर्चरिंग करना बहुत जरूरी है
0: जी,
1: है ना। ये चीज ऐसी है कि इट इज अपार्ट फ्रॉम योर एजुकेशनल सर्टिफिकेशंस, योर एजुकेशनल नॉलेज, दिस इज रिक्वायर्ड इन ईच एंड एवरी लेवल ऑफ इंटरव्यू।

0: राइट राइट राइट, मतलब जिसे थोड़े में मैं बोलूं कहना चाहूं,
1: हाँ जी,
0: तो ये आपके ही हाथ में है,
1: आपके हाथ में चीज है और इसकी तैयारी आप करके जाए
0: जी,
1: है ना? क्या बोलना है आपको वो यदि आप थोड़ा सा रिवाइज कर ले और कॉन्फिडेंटली वहां पे प्रेजेंट करे तो उसका बहुत अच्छा इम्प्रेशन जाता है। तो कॉन्फिडेंस आपका होना बहुत जरूरी है
0: जी जी।
1: सिंपल से लैंग्वेज में मैं ये बताऊंगा कि आपको जितना पता है कॉन्फिडेंटली बोलो ये मुझे पता है
0: जी।
1: जो पता नहीं है इसका मतलब नहीं है कि आप गधे हो या फिर आप ये सीख नहीं सकते हो।
0: सही,
1: बी कॉन्फिडेंट, ये नहीं है पता मुझे, मैं सीख लूंगा।
0: सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा।
1: दैट इज हाउ यू नीड टू डेवलप कॉन्फिडेंस इन योरसेल्फ।
0: एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली राइट।
1: बहुत कॉन्फिडेंस मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है,
0: इम्पोर्टेंट। बहुत सही चीज बताई बाजी सर आपने, और मैं अभी तीसरे पॉइंट पे चलता हूँ सीधे। तीसरा और जो सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, वैसे सभी हैं पर उनमें से ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, कम्युनिकेशन जिसे कहते हैं। बाजी सर मैं आपको एग्जांपल देना मैं चाहूंगा।
1: हाँ जी।
0: आपने भी बहुत इंटरव्यू लिए, फ्रेशर्स कैंपस में जाके लिए, एक्सपीरियंस सब कुछ लिया,
1: राइट राइट।
0: आपके करियर में भी ऐसे कितने कैंडिडेट आए होंगे आपको लगता होगा जीनियस है, नॉलेज बहुत अच्छा है, पर सिर्फ आपने इसलिए रिजेक्ट किया, और मैंने भी रिजेक्ट किया, मैं एक्सेप्ट करता हूँ मैं रिजेक्ट किया हूँ, कि सिर्फ उस कैंडिडेट में कम्युनिकेशन की स्किल नहीं थी,
1: राइट।
0: और मुझे इस बात का बहुत दुख भी होता था कि सब कुछ है उस कैंडिडेट में पर वो कम्युनिकेशन जो है वो कर नहीं पाते हैं,
1: राइट।
0: और मैं एक और एक्सपीरियंस में बताता हूँ, बी स्कूल में एज ए विजिटिंग फैकल्टी गेस्ट लेक्चरर करके भी मैं जाता रहता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ। मैं कहता हूँ मेरे हिसाब से जो सुन रहे हैं अभी कान खोल के सुन ले और इसे गार्ड बांध ले, नॉलेज इज रिक्वायर्ड ओनली 50%। वेन एवर कोई भी आपका इंटरव्यू ले रहा है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है 50-60% नॉलेज है चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, और बाकी बचा उसे कम्युनिकेशन ही चाहिए रहता है।
1: बहुत सही बता रहे हैं सर आप।
0: जो 50% आपका नॉलेज है और 50% उसको कम्युनिकेट कर सकते हैं, मैंने अपने करियर में उस कैंडिडेट को हमेशा टिक मार्क किया और रिक्रूट किया। तो कम्युनिकेशन इतना इम्पोर्टेंट है दोस्तों जो सुन रहे हैं, अगर कल से आप कम्युनिकेशन पे अपने वर्क करना चालू कीजिए, और इररिस्पेक्टिव ऑफ लैंग्वेज, जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल फर्राटेदार इंग्लिश ही बोलें, पर आपको कम्युनिकेशन, आप अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं कि ये बहुत महत्वपूर्ण है।
1: करेक्ट करेक्ट।
0: एज आई से हर लेक्चर में मैं बोलता हूँ, अल्बर्ट आइंस्टाइन इज ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट ऑफ द एरा, नोबडी कैन टच हिम, बट नॉट नेसेसरली ही कैन डाउनलोड हिज नॉलेज एज ब्यूटिफुली हु हैज ओनली 50% द नॉलेज वॉट ही हैड। तो दोस्तों कम्युनिकेशन इज इम्पोर्टेंट, और बाजी सर आप अपना एक्सपीरियंस भी थोड़ा सा शेयर कीजिए।
1: राइट राइट सर, कम्युनिकेशन को हम थोड़ा सा है ना ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं या डिफाइन कर सकते हैं
0: जी,
1: अपने विचार आप कितने अच्छे तरीके से सामने वाले तक पहुंचा सकते हो,
0: दैट
1: इज कम्युनिकेशन
0: जी जी जी।
1: मैं मेरे विचार यदि स्पष्ट तरीके से कॉन्फिडेंटली आपके सामने मैं रख रहा हूँ और वो आप तक पहुंच रहे
0: जी,
1: तो मेरा कम्युनिकेशन सक्सेसफुल हुआ।
0: एग्जैक्टली।
1: यदि वो पहुंच नहीं रहे
0: जी
1: तो फिर आपका कम्युनिकेशन
0: नहीं हुआ,
1: नहीं हो रहा है।
0: सही कहा आपने, सही कहा।
1: और ये पर्सनल लाइफ में भी बहुत जरूरी है।
0: सही कहा।
1: और इसी मिसकम्युनिकेशन से ही बहुत बड़े आज में जो भी प्रॉब्लम हो रहे हैं वो इसी की वजह से हो रहे
0: हैं।
1: इंटरव्यू में हम लोग यदि सक्सेसफुल होते हैं या फेल होते हैं तो उसका मेन रीजन यही होता है कि डू वी एबल टू कम्युनिकेट प्रॉपरली और नॉट। तो कम्युनिकेशन प्रॉपर करने के लिए मैं सबसे पहला रूल ये बताऊंगा कि सामने वाले की चीज है ना ध्यान से सुनो।
0: तो आपका कहने का मतलब वो जो प्रश्न पूछ रहे हैं उसे ध्यान से सुनो,
1: सबसे इम्पोर्टेंट चीज ध्यान से सुनो सामने वाला क्या क्वेश्चन पूछ रहा है,
0: राइट।
1: उसका मकसद क्या है, उसका क्वेश्चन क्या है,
0: राइट राइट,
1: है ना, ये फर्स्ट चीज है
0: जी जी।
1: वो आपको समझ में आ गई देन कामली पोलाइटली शांति से उसका आंसर आप दो।
0: सही कहा।
1: तो लिसनिंग स्किल, उसके बाद में आपका आता है कम्युनिकेशन स्किल। आप सामने वाला बोल रहा है उसके सुनने के पहले ही कुछ जवाब दे दो
0: जी,
1: तो सामने वाला भी थोड़ा सा ये हो जाता है यार ये क्या बोल रहा है।
0: जी जी जी, सही कहा आपने।
1: तो फर्स्ट है लिसनिंग स्किल, आप सुनो सामने वाला जो क्या बोल रहा है ध्यान से सुनो और फिर उसको आंसर दो विथ योर क्लियर थॉट।
0: यस यस यस यस,
1: है ना।
0: यस,
1: अब आंसर में आपकी क्लैरिटी इन थॉट्स कैसी होती है कि जो आपको बोलना है ना वो क्लियरली बताओ, सर ये चीज ऐसी है और मुझे ये पता है।
0: एग्जैक्टली,
1: क्लैरिटी इन थॉट।
0: सही कहा
1: आपने, क्लियरली एक चीज यदि प्रॉपर इसमें कम्युनिकेट की है विद क्लियर थॉट तो वो सामने वाले के दिल तक पहुंचती है।
0: सही कहा आपने,
1: आप खुद कंफ्यूज है तो वो चीज सामने वाले तक पहुंच नहीं पाएगी।
0: true, true.
1: तो क्लैरिटी इन थॉट एंड क्लैरिटी इन आंसर ये बहुत जरूरी है
0: जी,
1: है ना। और यदि आपको पता नहीं है तो आप फ्रैंकली बोल दो, मुझे ये पता नहीं है सर।
0: जी बहुत सही कहा आपने, बहुत सही कहा,
1: है ना। तो पता नहीं है ये कॉन्फिडेंटली, उसको कॉन्फिडेंस भी दिखता है और दूसरा ये आपका कम्युनिकेशन क्लियर हो जाता है।
0: जी जी जी,
1: है ना। देन ही विल नॉट स्क्रू ऑन दैट पॉइंट।
0: यस
1: यार, नहीं इसका और बताओ और बताओ।
0: जी, जी जी,
1: पता नहीं तो बता दो, मुझे ये पता नहीं है।
0: जी बिल्कुल सही कहा। और हम इस कम्युनिकेशन को थोड़ा लंबा इसलिए खींच रहे हैं दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट मैंने आज तक रिजेक्ट किए, बिलीव मी बाजी सर ने भी इसलिए रिजेक्ट किए कि कम्युनिकेशन ठीक से नहीं कर पा रहा है कैंडिडेट, इसलिए रिजेक्ट होता है। मैक्सिमम रिजेक्शन दोस्तों, आप सुन लीजिए, लिसनर जो सुन रहे हैं, सिर्फ कम्युनिकेशन कैंडिडेट नहीं कर पा रहा इसलिए होती है। और दूसरा उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं और थोड़ा सा ऐड करूंगा, जब भी आप इंटरव्यू लेते हैं तो ये मैंने एक्सपीरियंस किया हुआ है, जो खासकर जो फ्रेशर होते हैं या एक आध साल ही एक्सपीरियंस है, जब इंटरव्यू देने आते हैं थोड़ा नर्वस रहते हैं और बड़ी धीमी आवाज में बात करते हैं। जब भी आप इंटरव्यू दे रहे हो तो अपनी आवाज को थोड़ा सा, वॉल्यूम को थोड़ा सा ऊपर उठाइए।
1: इससे तो दो चीजें मतलब का बेनिफिट हो जाता है।
0: जी,
1: यदि आप थोड़ा सा लाउड बोल रहे हो
0: जी,
1: तो सामने वाला का अटेंशन आपकी तरफ रहता है।
0: एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
1: और यदि उसका अटेंशन आपकी तरफ है तो इसका मतलब दो कम्युनिकेशन पॉइंट ज्वाइन हो चुके हैं।
0: एग्जैक्टली,
1: इधर से उधर वो मैसेज जाने में आसानी हो जाती है।
0: दोस्तों ऐसे ऐसे बेहतरीन पॉइंट्स आपको आज बताए हैं कि तो दुनिया में आप कहीं भी खोजोगे तो आपको मिलेगा नहीं। कैसे हम दोनों ने मिलकर कैंडिडेट्स को सेलेक्ट किया, वो आपके साथ आज पूरा राज खोल रहे हैं हम।
1: राइट राइट राइट। ये पर्सनल एक्सपीरियंस है।
0: जी जी, हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: तो अगला पॉइंट है बॉडी लैंग्वेज। इसमें एक एग्जाम्पल मैं दूंगा, मेरा एक बहुत क्लोज फ्रेंड है, तो वो अभी बहुत बड़ी एमएनसी कंपनी के ग्रुप हेड एचआर है। ग्रुप हेड है ना, बहुत बड़ी हस्ती, मैं कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूंगा। अभी वो यूएस में बेस्ड है, कंपनी यूएस कंपनी है। तो एक बार मैंने उनसे ऐसी पूछा कि इंटरव्यू कैसे चालू था। उसने कहा, अबे यार इंटरव्यू तो जिस मोमेंट कैंडिडेट मेरे दरवाजे के अंदर पांव डालता है उस मोमेंट से मैं असेसमेंट करना चालू कर देता हूँ उस कैंडिडेट का। तो मैंने पूछा कैसे, तो उसने मुझे 10 मिनट केवल बॉडी लैंग्वेज पे बात बताई। तो बोला, कैंडिडेट जब बैठता है रिसेप्शन में कैसे बैठा है, कैसे रिसेप्शनिस्ट से बात कर रहा है, कैसे अगर सीटिंग नहीं है तो कैसे वेट कर रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसे, उससे पूरा उसका समझ में आ जाता है कि वो कैंडिडेट किस तरह का कैंडिडेट है। तो उसको मैं थोड़ा सा एलैबोरेट करना चाहूंगा बाजी सर।
1: हाँ जी।
0: मेन है, जब आप रिसेप्शन में आके बैठेंगे, छोटा छोटा पॉइंट मैं आपको बताता हूँ, कभी भी लेजी तरीके से आप जो रिसेप्शन एरिया वेटिंग एरिया में कभी भी मत बैठिए, अटेंटिव और एंथुसियाज्म और एनर्जी के साथ आप बैठिए। लेजी तरीके से जैसे लटक गए, झुक गए, आराम से ऐसे बैठ गए, वैसे बिल्कुल आप मत कीजिए। और जैसे मैंने कहा, मैं कैसे असेस करता था, रिसेप्शन एरिया से लेके मेरे डेस्क तक 25 कदम वो कैंडिडेट कैसे आ रहा है। और बिलीव मी, वो जो 25 सेकंड होते थे, उस 25 सेकंड में बाजी सर मैं कैंडिडेट को 20-25% मैं आइदर टिक कर देता था या क्रॉस कर देता, या अदर मैं सोचता था यस इसमें दम है या इसमें दम नहीं है, समझ जाता था। क्यों? अगर उसकी वॉक में एनर्जी है तो मुझे लगता था यस एंथुसियाज्म है बंदे में, कैंडिडेट में जोश है, यानी वॉकिंग जो है तो एनर्जी दिखाइए। और आप जब बैठेंगे तो एकदम अटेंशन भी मत बैठिए और लेजी भी मत सीटेंगे, तो आपका पोस्चर जो है स्ट्रेट होना चाहिए और एनर्जी भरा होना चाहिए।
1: राइट राइट।
0: तीसरा, जब इंटरव्यूअर से आप बात कर रहे हैं तो इधर उधर लेफ्ट राइट देख के, नीचे ऊपर देख के बात मत कीजिए, आई कांटेक्ट मेंटेन करना है जिससे आप इंटरव्यू दे रहे हैं। उसका मतलब ये नहीं कि आपको घूरना है, नॉर्मल जो है आई कॉन्टैक्ट, दैट शोज कि आपका कॉन्फिडेंस बहुत है। जब आप आंख में देख के बात करते हैं तो इसका मतलब है कॉन्फिडेंस है। अगर आप इधर उधर करेंगे तो हिंदी में कहते हैं जिसे आंख चुराना, नर्वस हूँ मुझे आता नहीं है तो मैं आंख चुराऊंगा, पर मैं कॉन्फिडेंट हूँ तो मैं आंख में आंख डाल के मैं बात करूंगा। और चौथा पॉइंट मैं डालना चाहूंगा, जब इंटरव्यूअर आपसे कुछ सवाल कुछ कर रहा है तो आप उसको थोड़ा जो हेड है मूवमेंट है वो थोड़ा होना चाहिए। जैसे हम यस कहते हैं तो आपका सर जो है
1: आपको समझ रहा है इसका मतलब।
0: हाँ, आप समझ रहे हैं, आप समझ रहे हैं। वैसे बहुत सारे पॉइंट है, हम उतना सारा भी कवर नहीं कर सकते हैं, पर ये मेन जो 4 पॉइंट है ये मैं बहुत एम्फेसिस करना चाहता था। मुझे अगर कैंडिडेट की बॉडी लैंग्वेज अगर पसंद आ जाए तो उस कैंडिडेट को मैं हमेशा रखता ही था कि अगर इसको ले सकते हैं बॉस, इसमें दम है।
1: तो हमने ये 4 पॉइंट कवर किए हैं।
0: जी
1: है
0: जी।
1: फर्स्ट इम्प्रेशन कॉन्फिडेंस, देन थर्ड इज कम्युनिकेशन, फोर्थ इज बॉडी लैंग्वेज। तो लास्ट में मैं 5th पॉइंट ये हम लोग डिस्कस करते हैं, वो है नॉलेज।
0: जी जी।
1: ये फिफ्थ में हम लोगों ने इसलिए रखा है क्योंकि ये पहली चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है।
0: जी जी,
1: नॉलेज आपके पास है
0: जी,
1: है ना, जैसे आपने भी शुरू में बताया कि 50% नॉलेज भी है तो भी चल सकता है
0: जी,
1: बट उसमें पहली चार चीजें होनी चाहिए।
0: जी बिल्कुल सही,
1: यू शुड गिव प्रॉपर फर्स्ट इम्प्रेशन, यू शुड हैव अ प्रॉपर कॉन्फिडेंस,
0: यस,
1: यू शुड कम्युनिकेट
0: प्रॉपरली
1: और उसका बॉडी लैंग्वेज से ये सारा रिफ्लेक्ट होता है।
0: जी जी,
1: तो नॉलेज के प्रिपरेशन कैसे करें, नॉलेज ये पॉइंट हमने कैसे तैयारी करनी चाहिए। तो किसी पोजीशन के लिए हम लोग इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो हमें पता होता है कौन से कंपनी के लिए जा रहे हैं
0: जी,
1: तो अपने पास थोड़ा सा वक्त होता है उस कंपनी के बारे में इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए
0: जी,
1: हमने वो इन्फॉर्मेशन निकालनी चाहिए
0: जी,
1: है ना। फिर वो इंडस्ट्री क्या है, वो इंडस्ट्री का थोड़ा सा नॉलेज अपने पास रखनी चाहिए
0: जी,
1: है ना, कंपनी इंडस्ट्री, और फिर वो कंपनी का प्रोडक्ट्स क्या है ये भी थोड़ा सा जानकारी हमने कलेक्ट करके इंटरव्यू को जाने के पहले ही हम लोग रखे अपने पास तो अच्छा है। इट शोज योर प्रोफेशनल अप्रोच।
0: एग्जैक्टली।
1: कभी कभार इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेता है क्या आपको कंपनी के बारे में पता है।
0: जी पूछता ही है ना,
1: पूछता ही है क्या आपको प्रोडक्ट के बारे में पता है, तो आपका कॉन्शियस लेवल उसमें से रिफ्लेक्ट होता है।
0: करेक्ट।
1: आप कितने प्रोएक्टिव है वो उसमें से दिखता है।
0: ये आपने सही शब्द कहा, आप कितने प्रोएक्टिव
1: जी, है ना। आप ये इन्फॉर्मेशन लेके जाते हो, थोड़ा सा नॉलेज लेके जाते हो, तो आपकी एक क्वालिटी वहां पे आप डिस्प्ले कर सकते हो, आपका प्रोएक्टिवनेस, आपका कॉन्शियसनेस। तो ये फिफ्थ चीज है नॉलेज, और ये पांच चीजें बहुत अच्छी तरीके से सर आपने भी समझाई है, है ना। ये पांच चीजों पे हम लोगों ने पूर्व तैयारी करके प्रिपरेशन करके जाना चाहिए इंटरव्यू के लिए।
0: बाजी सर बिल्कुल सही। और दोस्तों जो हम लोगों को सुन रहे हैं आज, ये आपको कोई किताबी ज्ञान नहीं है, ये हमारा एक्सपीरियंस हम आज शेयर किया है हम लोगों ने कि हम लोगों ने क्यों सेलेक्ट किया। तो ये पांच पॉइंट जो है इतने महत्वपूर्ण है, और बिलीव मी अगर आप इस चीज पे अगर तैयारी कर लेंगे तो आप 100 में से कम 80 इंटरव्यू जो है, जो 80%
1: वो थ्रू हो जाएंगे,
0: आप थ्रू हो सकते हैं। 100%. ये 100% है। मैंने और बाजी सर ने हमेशा कैंडिडेट में यही चीज ही देखी है, नॉलेज 50-60% हम देखते थे कि है नहीं है, बंदे में दम है, इंप्रेशन है, कॉन्फिडेंस है, कम्युनिकेशन है, नॉलेज है, ओ यस यू आर इन, यस बाकी उसको तैयार किया जा सकता है।
1: करेक्ट। तो मुझे लगता है हमने बहुत अच्छे तरीके से अभी इसको एक्सप्लेन किया है कौन से पांच पॉइंट पे हम लोगों ने तैयारी करके इंटरव्यू के लिए जाना चाहिए।
0: राइट। दोस्तों जो सुन रहे हमको आज के लिए इतना ही, अभय चौहान मोटिवेशनल स्पीकर लीडरशिप कोच की तरफ से,
1: और मैं राजेंद्र बाजी, धन्यवाद।
0: थैंक यू वेरी मच।